वही तो है जो तुम पर रहमत भेजता है और उसके फरिश्ते भी, ताकि तुमको अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाए, और खुदा मोमिनों पर मेहरबान है।

0: उसमें अबदुल आबाद रहेंगे, न किसी को दोस्त पाएंगे और न मददगार।
1: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا।
0: जिस दिन उनके मुंह आग में उलटाए जाएं, कहेंगे ऐ काश हम खुदा की फरमाबरदारी करते और रसूल खुदा का हुक्म मानते।

0: और कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमने अपने सरदारों और बड़े लोगों का कहा माना तो उन्होंने हमको रस्ते से गुमराह कर दिया।
1: ऐ
0: हमारे परवरदिगार, उनको दुगना अजाब दे और उन पर बड़ी लानत कर।

मोमिनों, तुम उन लोगों जैसे न होना जिन्होंने मूसा को ऐब लगाकर रंज पहुंचाया, तो खुदा ने उनको बेऐब साबित किया और वो खुदा के नजदीक आबरू वाले थे।

0: ईमान।
1: वो तुम्हारे सब आमाल दुरुस्त कर देगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा, और जो शख्स खुदा और उसके रसूल की फरमाबरदारी करेगा तो बेशक बड़ी मुराद पाएगा।

शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम भी उसे दुश्मन ही समझो। वो अपने पैरवों के गिरोह को बुलाता है ताकि वो दोज़ख वालों में हों।

0: और कोई उठाने वाला दूसरे का बोझ न उठाएगा, और कोई बोझ में दबा हुआ अपना बोझ बटाने को किसी को बुलाए तो कोई उसमें से कुछ न उठाएगा, अगरचे कराबतदार ही हो। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम उन्हीं लोगों को नसीहत कर सकते हो जो बिन देखे अपने परवरदिगार से डरते और नमाज बिल इल्तिजाम पढ़ते हैं, और जो शख्स पाक होता है अपने ही लिए पाक होता है, और सबको खुदा ही की तरफ लौट कर जाना है।
1: वमा यस्तवी अलअमा वलबसीर,
0: और अंधा और आंख वाला बराबर नहीं।
1: वलज़ुलुमातु वलन्नूर,
0: और ना अंधेरा और रोशनी।
1: वलज़िल्लु वलहरूर,
0: और ना साया और धूप।
1: वमा

वो उसमें चिल्लाएंगे कि ऐ परवरदिगार हमको निकाल ले, अब हम नेक अमल किया करेंगे न वो जो पहले करते थे, क्या हमने तुमको इतनी उम्र नहीं दी थी कि उसमें जो सोचना चाहता सोच लेता, और तुम्हारे पास डराने वाला भी आया, तो अब मजे चखो, जालिमों का कोई मददगार नहीं।

वक्फे के बाद एक बार फिर खुशामदीद। उसके बाद कुछ और चले तो अबू नायला ने फिर कहा कि भाई एक बार और सर सूंघने दो। उसने कहा ठीक है। अब की बार अबू नायला रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसके सर में हाथ डालकर जरा अच्छी तरह पकड़ लिया तो बोले ले लो अल्लाह के इस दुश्मन को। इतने में उस पर कई तलवारें पड़ी लेकिन कुछ काम ना दे सकी। ये देखकर मोहम्मद बिन मुस्लिमा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने झट अपनी कदाल ली और उसके पेड़ों पर लगा कर चढ़ बैठे। कदाल आर पार हो गई और अल्लाह का ये दुश्मन वहीं ढेर हो गया। हमले के दौरान उसने इतनी जबरदस्त चीख लगाई थी कि गिर्दो पेश में हलचल मच गई थी और कोई ऐसा किला बाकी ना बचा था जिस पर आग रोशन ना की गई हो। लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। कार्रवाई के दौरान हजरत हारिस रजी अल्लाह तआला अन्हु को बास साथियों की तलवारों की नोक लग गई थी जिससे वो जख्मी हो गए थे और उनके जिस्म से खून बह रहा था। चुनाचे वापसी में जब ये दस्ता उरैस पहुंचा तो देखा कि हारिस रजी अल्लाह तआला अन्हु साथ नहीं है, इसलिए सब लोग वहीं

रुक गए। थोड़ी देर बाद हारिस भी उनके निशानात कदम देखते हुए आन पहुंचे। वहां से लोगों ने उन्हें उठा लिया और बकई गरकत पहुंचकर इस जोर का नारा लगाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सुनाई पड़ा। आप समझ गए कि उन लोगों ने उसे मार लिया है। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अल्लाहु अकबर कहा। फिर जब ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे तो आपने फरमाया, ये चेहरे कामयाब रहें। उन लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका चेहरा भी ए अल्लाह के रसूल, और इसके साथ ही इस तागूत का सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके कत्ल पर अल्लाह की हमदो सना की और हारिस के जख्म पर लाबे दहन लगाया, जिससे वो शफायाब हो गए और आइंदा कभी तकलीफ न हुई। इधर यहूद को जब अपने तागूत काब बिन अशरफ के कत्ल का इल्म हुआ तो उनके हट धर्म और जिद्दी दिलों में रोब की लहर दौड़ गई। उनकी समझ में आ गया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये महसूस कर लेंगे कि अमनो अमान के साथ खेलने वालों, हंगामे और इस्तराबात बपा करने वालों और अहदो पैमान का एहतराम ना करने वालों पर नसीहत कारगर नहीं हो रही तो आप ताकत के इस्तेमाल से भी गुरेज ना करेंगे। इसलिए उन्होंने अपने इस तागूत के कत्ल पर चू ना किया, बल्कि एकदम दम सादे पड़े रहे, इफाए अहद का मुजाहिरा किया और हिम्मत हार बैठे, यानी सांप तेजी के साथ अपने बिलों में जा घुसे। इस तरह एक मुद्दत तक के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैरून मदीना से पेश आने वाले मतवक्के खतरात का सामना करने के लिए फारिग हो गए और मुसलमान इन बहुत सी अंदरूनी मुश्किलात की बारे गिरा से सुबकदोश हो गए, जिनका अंदेशा उन्हें महसूस हो रहा था और जिनकी बू वक्तन फवक्तन वो सूंघते रहते थे। ग़ज़वा बुहरान, ये एक बड़ी फौजी तलायागर्दी थी जिसकी तादाद 300 थी। इस फौज को लेकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रबीउल अव्वल के आखिर में बुहरान नामी एक इलाके की तरफ तशरीफ ले गए थे। ये हुजाज के अंदर फरा के अतराफ में एक मादनियाती मकाम है और रबीउल अव्वल आखिर और जमादीउल अव्वल के दो महीने वहीं कयाम फरमा रहे। उसके बाद मदीना वापस तशरीफ लाए, किसी किस्म की लड़ाई से साबका पेश न आया। सरैया ज़ैद बिन हारिसा, जंगे उहद से पहले मुसलमानों की ये आखिरी और कामयाब तरीन मुहिम थी जो जमादियुल आखिरक में पेश आई। वाकये की तफसील ये है कि कुरैश जंगे बदर के बाद से कलक व इस्तराब में मुब्तला तो थे ही, मगर जब गर्मी का मौसम आ गया और मुल्क शाम के तजारती सफर का वक्त आन पहुँचा तो उन्हें एक और फिक्र दामनगीर हुई। उसकी वजाहत इससे होती है कि सुफवान बिन उमैया ने, जिसे कुरैश की तरफ से इस साल मुल्क शाम जाने वाले तजारती काफले का मीर कारवां मुंतखब किया गया था, कुरैश से कहा, मोहम्मद और उसके साथियों ने हमारी तिजारती शारा हमारे लिए पुरसोबत बना दी है। समझ में नहीं आता कि हम उसके साथियों से कैसे निमटे। वो साहिल छोड़कर हटते ही नहीं और बाशिंदगान साहिल ने उसे मसलहत कर ली है। आम लोग भी उन्हीं के साथ हो गए हैं। अब समझ में नहीं आता कि हम कौन सा रास्ता इख्तियार करें। अगर हम घरों में ही बैठे रहे तो अपना असल माल भी खा जाएंगे और कुछ बाकी ना बचेगा, क्योंकि मक्के में हमारी जिंदगी का दारोमदार इस पर है कि गर्मी में शाम और जाड़े में हबशा से तिजारत करें। सफवान के इस सवाल के बाद इस मौजू पर गौर व खौज शुरू हो गया। आखिर अस्वद बिन अब्दुल मुतलिब ने सफवान से कहा, तुम साहिल का रास्ता छोड़कर इराक के रास्ते सफर करो। वाज़े रहे कि ये रास्ता बहुत लंबा है, मदीने के मशरिक में खासे फासले से गुजरता है। कुरैश इस रास्ते से बिल्कुल नावाकिफ थे, इसलिए अस्वद बिन अब्दुल मुतलिब ने सफवान का मशवरा दिया कि वो फिरात बिन हयान को, जो कबीला मकर बिन वायल से ताल्लुक रखता था, रास्ता बताने के लिए रहनुमा रख ले। वो इस सफर में इसकी रहनुमाई कर देगा। इस इंतजाम के बाद कुरैश का कारवां सफवान बिन उमैया की कयादत में नए रास्ते से रवाना हुआ, मगर इस कारवां और इसके सफर के पूरे मंसूबे की खबर मदीना पहुंच गई। हुआ ये कि सलीद बिन नौमान रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो मुसलमान हो चुके थे, नईम बिन मसूद के साथ, जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, बादा नोशी की एक मजलिस में जमा हुए। ये शराब की हुरमत से पहले का वाकया है। जब नईम पर नशे का गलबा हुआ तो उन्होंने काफले और उसके सफर के पूरे मंसूबे की तफसील बयान कर डाली। सलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु पूरी बर्क रफ्तारी के साथ खिदमत नबवी में हाजिर हुए और सारी तफसील कह सुनाई। सामईन, वक्त की कमी के बायस हम अपने इस सिलसिले को यहीं पर बर्खास्त करेंगे। इंशाल्लाह अपने इसी सिलसिले का आगाज एक बार फिर अगली नशस्त में करेंगे। इसके साथ ही कासिम भट्टी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।

13 अगस्त 1947, ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947, ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, UCP की दुनिया FM 92.6।

www.lucifer.edu.ek. FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर वन।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया।
1: वेलकम बैक सामाइन, हम मौजूद हैं FM 92.6 से आपकी खिदमत में और एक बड़ी मुफीद गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा उसको जारी करेंगे जो हम वक्फे पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि किस तरह से जो ज़हनी सेहत है उसका मौसमियाती तब्दीली के साथ कैसे उसका ताल्लुक बनता है। सैलाब आया है, लोग बेचारे घरों से बेघर हैं, उनके जानवरों के लिए चारा मौजूद नहीं है, वो हर वक्त की उनको परेशानी है। फिर बाज़ जगह पे ये होता है कि जब उनके लिए इमदाद तकसीम की जा रही है, उनको कतारों में दिखा के उनकी तस्वीरें ली जा रही हैं, जो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हमारी तस्वीरें इस तरह से ना आए, वो उनके वक्कार को ठेस पहुंचाती हैं। कुछ इदारों ने मैंने देखा है कि वो ये काम किया है कि वो ये करते हैं कि उनके खैमों के अंदर ही जाकर तकसीम करते हैं ताकि कोई उनकी तस्वीर ना बना सके कि वो खुराक वसूल कर रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये जाहिर करती है कि ये जो कुदरती आफात हैं, क्लाइमेट चेंज है, जो सलब सैलाब आए हैं, इसके नतीजे में इंसानी जो वक्कार है उसके ऊपर कितना बड़ा धचका लगता है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि 2010 के सैलाब के दरमियान मेरी फैमिली को मूव करना पड़ा मुजफ्फरगढ़ से और बहावलपुर में अपने अजीजों के यहाँ जाकर ठहरना पड़ा, और 5 दिन तक जब वो ठहरे उनके घर में और हमारे फैमिली के बहुत सारे अफराद थे, हमें खुद इस चीज़ का बड़ा शिद्दत से एहसास था कि उनके लिए एक बोझ है, बर्डन है, लेकिन रास्ते मुनक़त थे और ये सारे मसाइल थे। तो उससे वक़ार का जो मामला हैं वो इंसान को पता चलता है कि हम दूसरे के घर पर जाके बोझ बन गए हैं और दूसरा शख्स भी परेशान हो रहा होता है कि इतने सारे अफराद को हम खाना कहाँ से खिलाएं। तो यकीनन इन कुदरती आफात का जो ताल्लुक है या मौसमियाती तब्दीली का जो ताल्लुक है वो इंसान की ज़हनी सेहत के साथ इस तरह से बनता है। अब मुझे समझ में आ गई है कि ज़बरदस्ती नहीं गुजारा जा रहा बल्कि इसका वाकई ताल्लुक जो है वो इस तरह से बनता है। अच्छा, अब हम गुफ्तगू को समेटेंगे, हम ज़रा कॉन्फ्रेंस की तरफ दोबारा आएंगे। अब ज़रा ये थोड़ा सा मुझे डॉक्टर साहब आप बताइएगा कि इस कॉन्फ्रेंस के जो मकासद हैं, वो तो ये मौजू जो है वो तो हमें बता रहा है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, वो क्या करेंगे, रिसर्च पेपर्स पढ़ेंगे, कोई वो डिस्कशन में हिस्सा लेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह।
2: डॉक्टर साहब, इसके लिए जो कॉन्फ्रेंस का एक थीम है उसके मुताबिक तरीकाकार यही होता है। आप भी क्वाइट वेल अवेयर हैं आप कि कॉन्फ्रेंस के अंदर रिसर्च पेपर्स तो उसकी एक बेस होती है, और अगेन हम डिग्नी लॉग्स भी करवाएंगे और रिसर्च पेपर्स भी कराएंगे, और इसमें हमारे पास दो
1: रिसर्च पेपर्स तो डॉक्टर साहब प्रेजेंटर्स आकर जो रिसर्चर्स भी हो सकते हैं और वो एकेडेमिया से भी ताल्लुक रख सकते हैं।
2: जी जी बिल्कुल।
1: वो क्या ये सारे पाकिस्तान से लोग आएंगे इसमें?
2: जी, यही मैं आपको मजीद बताने जा रही थी कि इसमें हमारे साथ यूनिवर्सिटी ऑफ लिम्ब्रिक आयरलैंड से भी लोग जो हैं वो शामिल होंगे, प्रोफेसर्स शामिल होंगे, इसी तरह से ओस्लो से, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्वे ओस्लो से भी हमारे पास लोग आ रहे हैं। इसी तरह से हमारे पास तकरीबन काफ़ी सारे अभी तक हमें जो लोग अपना काम और अपनी रिसर्चेस भेज
1: तो
2: चुके हैं।
1: तो ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होगी डॉक्टर?
2: जी बिल्कुल, हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ही कर रहे हैं जी, और इसमें दो मोड्स हैं हमारे पास, क्योंकि जो हमारे इंटरनेशनल गेस्ट यहाँ पे हमारे पास ट्रैवल नहीं कर सकते वो ऑनलाइन अपने मकाले प्रेजेंट करेंगे, और वो हमें एक तो उससे इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव्स भी डेवलप होंगे और दूसरा पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी हाईलाइट होंगी। और उसके साथ साथ हम कॉन्फ्रेंस के अंदर एक जो हमारे पैनल डिस्कशंस होती हैं कि जहाँ पे हमारे जो लीडिंग प्रोफेशनल्स हैं जो कि इन एरियाज में काम कर रहे हैं वो बैठ के इसमें
1: जो
2: प्रैक्टिसिंग लोग हैं बिल्कुल, वो पॉलिसी मेकर्स भी हैं, वो कुछ रिसर्चर्स भी हैं, वो कुछ प्रोफेसर्स भी हैं जो इसमें रिसर्च कर रहे हैं, तो पैनल डिस्कशंस भी करेंगे। उसके अलावा कीनोट स्पीकर्स भी होते हैं, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स भी होते हैं, तो हर शख्स जो इसमें शामिल होगा वो अपना इनपुट देगा, स्टूडेंट्स की तरफ से इनपुट भी आएगा, कुछ स्टूडेंट्स भी हमारे जो इन एरियाज पे काम कर रहे हैं वो भी अपना काम प्रेजेंट करेंगे।
1: अच्छा, ये जो गैर मुल्की मेहमान आएंगे या पॉलिसी मेकर्स आएंगे या प्रैक्टिसिंग लोग जो है वो इस शोबे से आएंगे, क्या उनको आप हमारे सामने के लिए क्या ये मुमकिन होगा उस मौके पे कॉन्फ्रेंस की गहमा गहमी में कि उनके साथ हम कोई प्रोग्राम कर सकें सामने की
2: आगाही
1: के लिए? गैर मुल्कियों के साथ हम अंग्रेजी में कर सकेंगे और जो हमारे पाकिस्तानी हैं उनसे हम उर्दू में कर सकते हैं?
2: जी बिल्कुल,
1: इसकी अगर कोई पॉसिबिलिटी हो तो बहुत अच्छा होगा।
2: बिल्कुल, हम पूरी कोशिश करेंगे और हमारा ऑलरेडी ये प्लान में है कि जो भी हमारे इंटरनेशनल गेस्ट आ रहे हैं वो एक हमारा टीवी शो भी और रेडियो शो भी जरूर करें, ताकि जो कॉन्फ्रेंस के अंदर हो रहा है वो तो डेफिनेटली हम उसको लाइव भी करते हैं, उसकी रिपोर्ट भी दी जाती है, लेकिन जब वो ये प्रोग्राम करेंगे तो आई बिलीव कि वो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। और वो जो पैगाम है वो भी बहुत जरूरी है कि एक आम सुनने वाला इंसान जो इस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुआ उस तक भी वो पैगाम पहुंच सके और ये लोग अपनी जो पर्सपेक्टिव्स हैं, जो अपना नजरिया है, जो अपना जिस तरीके से वो चीजों को हैंडल कर रहे हैं, हम उनसे भी सीखें और वो हमसे सीखें कि किस तरह से मसाइल जो हैं वो दरपेश हैं प्रोफेशनल्स को और उसको कैसे सॉल्व किया जा सके।
1: जी मिस नईमा, आप जरा थोड़ा सा कॉन्फ्रेंस के हवाले से मजीद बता दीजिए कि इसके कितने सेशंस होंगे और अगर आप बता सकें कि कुल कितने प्रेजेंटर्स इसमें आ रहे हैं जो कॉन्फ्रेंस में अपने मकालाजात पेश करेंगे, मुल्की कितने हैं, गैर मुल्की कितने हैं, एक रफ सा आइडिया वो ये। और क्या इसमें जो यूसीपी की एक अच्छी खसूसियत है वो ये है कि ये इनक्रेज करती है अपने स्टूडेंट्स को भी कि ये भी मकालाजात पेश करें, तो क्या आपके डिपार्टमेंट से, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से हायर लेवल के स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली एमएस लेवल पे या पीएचडी लेवल पे या इवन बैचलर्स लेवल पे बच्चे प्रेजेंट करेंगे इस तरह की?
3: जी सर बिल्कुल, ये हमारी कॉन्फ्रेंस का बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है कि बच्चों को हम उसमें शामिल करें और उन्होंने अपने जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं उनको हमें भेजना भी शुरू कर दिया है और हम एम कर रहे हैं कि हम अराउंड 100 पेपर्स तो ज़रूर इंशाल्लाह प्रेजेंट हों हमारी कॉन्फ्रेंस में, नेशनल प्लस इंटरनेशनल। और उसके अलावा हमारे पास जो गेस्ट्स आ रहे हैं, जो कीनोट स्पीकर्स आ रहे हैं, डेफिनेटली वो भी अपने कुछ रिसर्चेस प्रेजेंट करेंगे। सो ये हम सबके लिए लर्निंग का एक बहुत अच्छा मौका होगा।
1: जरूरी नहीं है कि सिर्फ साइकोलॉजी के लोग ही जाकर इसको सुने, जिंदगी की किसी भी शोबे से ताल्लुक हो,
3: क्योंकि सर क्लाइमेट चेंज है, डिग्निटी है, तो वी आर एमिंग के हम उन लोगों को बुलाएं जो इस एरिया में एक्सपर्ट्स हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट वाले जो डिपार्टमेंट्स हैं, वी आर ट्राइंग के हम वहां से भी जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाएं, पैनल्स में शामिल करें, क्योंकि उनकी राय लेना बहुत जरूरी है। जो लोग ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं ऑब्वियसली दे नो मच बेटर देन अस।
1: अच्छा मिस नईमा, साथ साथ ये भी बता दीजिएगा कि ये जो कॉन्फ्रेंस में मकालाजात पढ़े जाएंगे, क्या ये कहीं किताबी शक्ल में या ऑनलाइन आम आदमी को पढ़ने के लिए दस्तियाब होंगे?
3: जी सर,
1: या इसकी एक्सेस लिमिटेड होगी?
3: बिल्कुल सर, हम ऑनलाइन प्रोसीडिंग्स डेफिनेटली इसकी जो है वो शेयर करेंगे सॉफ्ट कॉपी में।
1: दुरुस्त है। और दूसरी ये कि जो इसकी सिफारिशात तय की जाएंगी वो कौन से गवर्नमेंट के इदारे हो सकते हैं मुतल्लिका जहाँ ये सिफारिशात भेजी जाए?
3: सर क्योंकि हम इसको बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इन दो मेंटल हेल्थ, ऑब्वियसली वो लोग जो जो एसोसिएशंस हैं जो मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करती हैं, गवर्नमेंट लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी, हम उसको इसका पार्ट बनाएं। क्लाइमेट चेंज पे जो लोग हैं, जिस तरह ह्यूमन डिग्निटी का डॉक्टर एवलिन है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड
1: जो
3: नॉर्वे से ताल्लुक रखती हैं, क्योंकि वो इसके बाद भी मेरा ख्याल एक और कॉन्फ्रेंस पे जा रही हैं, तो वो हर साल में 2 से 3 कॉन्फ्रेंस ह्यूमन डिग्निटी पे ही करवाती हैं। सो हमारा पर्पस भी यही है कि ये पैगाम जहाँ पे वो जा रही हैं हमारे थ्रू पहुंचता रहा है।
1: बिल्कुल ठीक है।
2: और उसके अलावा डॉक्टर इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है,
3: हाँ जी,
2: डेफिनेटली उनका एक बहुत बड़ा रोल है कि मेंटल हेल्थ पे भी वो काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी गवर्नमेंट के इदारे हैं जो काम कर रहे हैं, तो कोशिश यही होगी कि हमारी सिफारिशात उस लेवल तक पहुंचे।
1: उनमें से बात तो शायद उनको मधु भी शायद
2: कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल,
1: अगर वो आते हैं तो वो एक तो बरह रास्त इंट्रैक्शन भी हो जाएगा और बसूरत दीगर ये कि वो जो सिफारिशात हैं, रिकमेंडेशंस हैं, वो आप मुतल्लिका महकमों को यकीनन जो है वो भेजेंगे। सामईन, आपने हमारे इन दोनों मेहमानों की गुफ्तगु सुनी जो कॉन्फ्रेंस से मुतल्लिक थी, उसके आगाज़ व मकासिद के ऊपर बात हुई, मकालाजात तकरीबन 100 से ज़ायद होंगे, तलबा भी उसमें शामिल होंगे। ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें पाकिस्तान से भी रिसर्चर्स शरीक होंगे और बैरूनी दुनिया से भी लोग आएंगे। इनमें डॉक्टर एवलिन, जिनका जिक्र इन्होंने किया, मैं उनसे मिल चुका हूँ, बहुत डायनामिक बुजुर्ग हैं, बहुत डायनामिक पर्सनैलिटी हैं, इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी हैं, और उनका जो स्टाइल है इंतहाई पॉजिटिव है। पिछली कॉन्फ्रेंस के मौके पर मेरी उनसे मुलाकात हुई और मेरी ख्वाहिश थी उनके साथ हमको प्रोग्राम करें, लेकिन उनकी बेतहाशा मसरूफियात और ज़ाहिर उनकी उम्र को मद्देनजर रखते हुए हम वो ना कर पाए। अब की बार ऐसा कुछ अगर हो गया तो मैं डॉक्टर शाजिया साहब आपसे दरख्वास्त करूंगा कि कोई इस चीज का एहतमाम जरूर करें।
2: डॉक्टर, मैं सिर्फ आपसे एक दरख्वास्त करूंगी कि आप प्लीज कॉन्फ्रेंस की जो डेट्स हैं वो जरूर शेयर कर दें।
1: जी जी प्लीज, वो जरा आप इसकी जो डेट्स हैं, बल्कि मैं आपसे ही कहूंगा कि इसकी जो डेट्स हैं
2: 29 और 30 अक्टूबर को जी ये कॉन्फ्रेंस इंशाल्लाह होगी।
1: जी बिल्कुल, बिल्कुल।
2: तो हम रिक्वेस्ट करते हैं जो हमारे सुनने वालों में प्रोफेशनल्स भी हैं और जो बाकी भी ऐसे लोग हैं जो इस पे कोई भी काम कर रहे हैं, तो अगर वो हमें अप्रोच करना चाहें तो वो जरूर हमें अप्रोच करें। 29 और 30 अक्टूबर को
1: शरीक हूं। पैटर्न इन चीफ जो हमारी इस कॉन्फ्रेंस के हैं वो प्रोफेसर डॉक्टर हमाद नवीद हैं, जो कि प्रोरेक्टर हैं हमारी यूनिवर्सिटी के, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के। इसको जो पेट्रोनाइज करने में लोग शामिल हैं उनमें मोहतरमा खदीजा आमिर साहिबा हैं, इसी तरीके से जो है वो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हमारा जो है वो उसमें शामिल है। फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज के डीन जो हैं वो डॉक्टर खालिद मंजूर भट्ट साहब, वो भी इसके पेटर्न्स में शामिल हैं जो इसको पेट्रोनेज दे रहे हैं और सहूलियात ये सब लोग मिलके दे रहे हैं, क्योंकि ये एक बुनियादी तौर पे बैन अलाक्वामी कॉन्फ्रेंस है, ज़ाहिर है उसके इंतजाम बहुत लंबे होते हैं। इसके जो चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं वो डॉक्टर साहब आप खुद हैं माशाल्लाह, और डिपार्टमेंट को भी आप ऐड कर रही हैं। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइज़र इसमें हैं उनमें जो ज़ाहिर है कि एक बड़ा काम होता है इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, डॉक्टर बुशरा नाज उसमें शामिल हैं, मोहतरमा नईमा सरफराज साहबा जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ये भी इसके ऑर्गेनाइजर्स के अंदर मौजूद हैं, डॉक्टर गुलनाज अंजुम साहबा हैं, और फिर कॉन्फ्रेंस की जो सेक्रेटरी के तौर पर फ़राइज सर अंजाम देंगी वो मोहतरमा मोमिना नैयर साहिबा होंगी। तो ये बहुत डायनामिक से लोग हैं, बहुत तजर्बाकार लोग हैं कॉन्फ्रेंस के हवाले से, और यकीनन इसके शुरका को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही हम आज के इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हुए डॉक्टर शाजिया साहिबा और मोहतरमा नईमा सरफराज साहिबा से मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, और सामईन आपका भी बहुत शुक्रिया। आप अपनी तजावीज़ और आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।

www.music.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

वेलकम बैक टू द शो एंड यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCB की दुनिया. और आप लोगों ने ज्वाइन किया एक्सक्लूसिव लेजेंड्स में फातिमा अहमद को. और एक्सक्लूसिव लेजेंड्स में बेसिकली हम लोग डिस्कस करते हैं किसी पाकिस्तानी फिल्म या फिर पाकिस्तानी म्यूजिकल पर्सनैलिटी को जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया होता है और एक ट्रेंड सेटर होते हैं बेसिकली. और उनके जो यंगस्टर्स होते हैं बेसिकली दे फॉलो देम एंड दे ट्राई कि वो फ्यूचर में बेसिकली वो बन सकें. हम लोग जिस पर्सनैलिटी को डिस्कस कर रहे हैं उनका नाम ए से शुरू होता है और वो पाकिस्तानी फिल्म और पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के बहुत बड़ा नाम है. और साथ साथ उनकी आवाज़ जो है वो बहुत मशहूर है और बहुत खूबसूरत और भारी और एक फुल होता है ना रोबदार एक आवाज़ होती है. तो बिल्कुल वो वाली आवाज़ है उनकी. और आज हम लोग जिस पर्सनैलिटी को डिस्कस कर रहे हैं उनका नाम आबिद अली है. तो बिल्कुल आप लोगों ने सही गेस किया, हम लोग आबिद अली को आज डिस्कस करेंगे. और आबिद अली की मतलब कि आई रिमेम्बर कि जब मैं छोटी थी तो आई हैव सीन ऑब्वियसली इनके ड्रामास और मुझे शुरू से ही इनकी आवाज़ और इनका वो रोबदार पर्सनैलिटी जो है ना वो बहुत अट्रैक्ट करती थी. और मुझे ऑब्वियसली जब आप छोटे होते तब आपको इतनी डिटेल्स में नहीं पता होता कि उस पर्सनैलिटी का नाम क्या है या फिर वो किस सेक्शन से बिलोंग करते हैं नॉन दैट. लेकिन बस आप उनको स्क्रीन पे देखते रहते हो या फिर आप उनकी आवाज़ इधर उधर सुनते रहते हो तो वो एक बहुत मज़े की चीज़ थी. लेकिन जब ऑब्वियसली जब आप बड़े होते हो तो फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता एहसास होता है कि हु इज़ हु एंड मतलब कि क्या उनका क्या मुकाम है बेसिकली. एंड नाउ व्हेन आई हैव ग्रोन अप तो नॉट ओनली आई लव हिज वॉइस स्टिल लेकिन फिर भी उनकी आवाज़ जो है ना वो अभी भी मेरी वन ऑफ द फेवरेट्स आवाज़ में उनकी जो है ना वो शामिल होती है आवाज़. और ऑब्वियसली एक जब आपको और आई बिलीव कि इनकी आवाज़ होती है ना वो एक नेचुरल ऑब्वियसली होती है जब आप बचपन से ही या फिर एक स्पेसिफिक टाइम आता है लड़कों की स्पेशली लाइफ में कि वो एक वक्त आता है कि आपके एकदम से ना आवाज़ जो है ना वो बेहतर हो जाती है और एकदम से वो एक भारी सी और एकदम से चेंज आता है. लेकिन आप खुद भी काम करते हो और स्पेशली एक्ट्रेस का ये होता है कि आपने आपकी आवाज़ अगर एक ही टोन में होती फिर भी आपने अपनी आवाज़ को एक कभी लो टोन में कभी हाई टोन में लेके जाना होता है हर रोल के हिसाब से कभी हैवी कभी सिंपल. तो उसके अलावा यही बेसिकली बातें हैं. खैर हम आबिद अली पे बात करें. ही वाज बोर्न इन 1952 एंड ऑब्वियसली ही इज अ वेरी सीनियर एक्टर. ना सिर्फ एक्टर ही इज आल्सो अ डायरेक्टर एंड ही इज आल्सो अ प्रोड्यूसर. मतलब के साथ साथ जो है वो सारी उनकी चीज़ें चल रही हैं. और इसके अलावा इनके सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो मुझे जब मैं बड़ी हो गई तब मुझे पता चला कि इनकी जो फैमिली है वो भी इनकी तरह ही टैलेंटेड है. और इनके जो मतलब इनकी जो बेटी हैं वो ईमान अली वो शी इज़ वेरी पॉपुलर एंड शी इज़ नॉट ओनली अ मॉडल she is also an actress and she is also a singer. और उसके अलावा रहमा अली हैं जो जिन्होंने एक अभी एक स्टूडियो आया था लेटेस्ट और उसमें उन्होंने अपना डेब्यू दिया था और उनकी आवाज़ भी अच्छी है और उन्होंने बहुत एक मशहूर और बड़ा पॉपुलर गाना उन्होंने गाया था और पुराने गाने को बेसिकली उन्होंने रीन्यू किया था और काफ़ी स्वीट सी आवाज़ है उनकी. उसके अलावा उनकी जो शादी हुई थी वो बेसिकली एक्ट्रेस और सिंगर जो है मेरा अली उनसे शादी हुई थी. तो वही बात है कि जब अम्मी अबू टैलेंटेड हो तो फिर बच्चे क्यों ना इतने टैलेंटेड पैदा हों. और वही बात है ना कि आपकी प्रोडक्शन अच्छी होती है बेसिकली. अब इस तरह करते हैं कि मतलब कि आबिद अली का एक छोटा सा इंट्रो तो हमने दे दिया लेकिन हम उनके जो लाइफ है या उनका जो करियर है उसको डिटेल में हम डिस्कस करते हैं. लेकिन तब तक हम लोग इस तरह करते हैं कि म्यूज़िकल ब्रेक पे चलते हैं. और इस म्यूज़िकल ब्रेक पे हम लोग कोई मतलब कि इस तरह करते हैं कि एक खूबसूरत सी आवाज़ जो है ना ऑब्वियसली हर सिंगर की आवाज़ तो अच्छी होती है लेकिन ये एक देन अगेन वन ऑफ माई फेवरेट वॉइस सज्जाद अली के हम आवाज़ सुनते हैं और फिर हम लोग वापस आते हैं विद आबिद अली. सो स्टे ट्यून्ड टू FM 92.6.

0: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।
1: Let's get stress free. Tune into FM 92.6 UCB की दुनिया।
2: वेलकम बैक लिसनर्स, आप लोग सुन रहे हैं FM 92.6 UCB की दुनिया और आप लोगों ने ज्वाइन किया है फातिमा अहमद को एक्सक्लूसिव लेजेंड्स में। एक्सक्लूसिव लेजेंड्स में हम लोग डिस्कस करते हैं किसी पाकिस्तानी फिल्म या फिर पाकिस्तानी म्यूजिकल इंडस्ट्री के किसी ऐसे ट्रेंड सेटर को जिसकी वजह से अभी तक जो यूथ है वो कहते हैं ना कि हम बड़े होकर ये बनना चाहते हैं, हम बड़े होकर ये बनना चाहते हैं। तो वो लोग जो है ना बेसिकली जो इंस्पायरिंग और जो एक ऐसी पर्सनैलिटीज़ होती हैं बेसिकली उन्हीं को ही फॉलो करते हैं। और आज जिस पर्सनालिटी को हम डिस्कस कर रहे हैं उनका नाम है आबिद अली। और हम लोग आबिद अली द पाकिस्तानी एक्टर, द पाकिस्तानी डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर उनको डिस्कस कर रहे हैं। और उनका जो सबसे पॉपुलर या फिर वो जो होता है ना एक जो द फर्स्ट डेब्यू ड्रामा जिसकी वजह से उनका मतलब कि एक बहुत पॉपुलर बहुत मशहूर हो जाते हैं, तो इनका वो ड्रामा था जिसमें उनका रोल था दिलावर। और उन्होंने बारिस मूवी सॉरी ड्रामा था जिसमें 1979 में ये ड्रामा आया था और PTV पर आया था। और इन्होंने बहुत मतलब कि बहुत नाम बनाया था और सिर्फ इनकी आवाज़ ने, क्योंकि मैंने पिछले लिंक में सिर्फ इनकी आवाज़ के बारे में कहा लेकिन इनकी एक्टिंग और इनके एक्सप्रेशंस और इनके रोल के अंदर ढल जाना जो है उसको इन्होंने अच्छे तरीके से अपना हिस्सा बनाया था। आबिद अली की आवाज़ कमाल की थी, उनकी आवाज़ में एक ठहराव था, बिल्कुल ऐसे ही है सर। वही बात है कि इनकी आवाज़ की वजह से ही स्टैंड्स आउट, और क्योंकि उनको पता है कि कैसे किस वक्त डिलीवर करना है, कैसे किस वक्त अपने अल्फाज को और अपने अपनी आवाज़ को ऊंच नीच करना। ये बहुत कम लोगों को अंदाज़ा होता है इस बात का, और ऑब्वियसली होना भी चाहिए क्योंकि आपको जब अल्लाह ताला ने एक इतनी खूबसूरत और इतनी वर्सटाइल आवाज़ दी है तो फिर आपको उसको उसके साथ खेलना भी आना चाहिए। खैर, अब हम आबिद अली की जो प्रोफेशनल लाइफ है उनको डिस्कस करें तो basically he launched himself as a director and producer with his hit drama Dasht in 1993 aur matlab ke he was also the first private production for Pakistan aur usi saal mein unhone PTV mein bhi direct kiya tha different drama jisme Dusra Aasman aur ye pehla drama tha jo bahar ke mulk mein usko shoot kiya gaya tha aur phir obviously different channels ke unhone different projects karte rahe lekin mazey ki baat ye hai ki Abid अली जो है वो कोयटा से बेसिकली ही बिलोंग्स और ही वॉज अट्रैक्टेड टू आर्ट्स और इस टाइप की डिफरेंट फील्ड्स में। ऑब्वियसली जब आपके अंदर एक आर्टिस्ट होता है तो फिर आपको ये टिपिकल जो फील्ड्स जो हमें बचपन से बताई जाती हैं कि एक डॉक्टर या इंजीनियर या बैंकर या लॉयर जो इस टाइप की फील्ड्स, ऑब्वियसली ये भी जिनको शौक होता है वो इस फील्ड्स में भी जाते हैं, लेकिन जिनको नहीं होता और जिनके अंदर वो एक होता है ना इनबॉर्न टैलेंट होता है कि हम लोग कुछ हट के करना चाहते हैं, तो फिर उनको शुरू से ही ऐसी डिफरेंट चीज़ें ट्रैक करती हैं। और उनको भी शुरू से ही आर्ट्स और इस टाइप की चीज़ें जो है वो अट्रैक्ट करती थी, और स्टोरीज़ लिखना, पेंटिंग और मतलब कि ऐसी चीज़ें की हॉबीज़ थी बचपन से ही। और उन्होंने रेडियो पाकिस्तान जो है सबसे पहले उन्होंने उसमें हिस्सा लिया लाहौर में, जब वो आए तो वहाँ पे सबसे पहले उन्होंने स्ट्रगल की। और वही बात है कि जब खूबसूरत आवाज़ थी और रेडियो जब पाकिस्तान में मौजूद था तो क्यों ना उसका हिस्सा बनते। और रेडियो पाकिस्तान एक, मैं शुरू से ही कहती हूँ कि जो हमारे मोस्ट सीनियर्स और जो मोस्ट टैलेंटेड जिनकी वजह से पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री जो है वो प्रॉपर एक सेटअप हुआ था, वो हमेशा अगर आप उनके नाम निकालें तो उनका वन वे अनदर उनका पार बेसिकली रेडियो पाकिस्तान का वो हिस्सा रहे हैं। और रेडियो से ही वो उभर के सामने आए होते हैं जिसमें बुशरा अंसारी भी हैं, जिसमें मुइन अख्तर भी हैं और नाव आबिद अली भी हैं और डिफरेंट इस तरह के नाम हैं। तो वो एक बहुत खूबसूरत और बहुत एक मज़े की चीज़ होती है। और उसके अलावा जो टेलीविज़न की बात करें, जब वो टेलीविज़न में आए थे तो उसमें ये था कि ही डायरेक्टेड, जिससे मैंने कहा कि उन्होंने डिफरेंट ड्रामास डायरेक्ट किए थे, तो इंक्लूडिंग सहेली इन 2007 और मासी और मलका और इस टाइप के, उन्होंने बेसिकली फैमिली बेस्ड ड्रामा जो थे 2009 में उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए। और क्योंकि फैमिली बेस्ड इसलिए इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हमारा जो कल्चर है, हमारी जो सोसाइटी है वो ऐसी है कि जिसमें आपको बहुत आप क्योंकि ड्रामास जो है वो बेसिकली जो है ना عورتیں ہی دیکھتی ہیں اور بیسکلی انہیں کا ہی شوق ہوتا ہے کہ ڈراماز دیکھنا, تو انہوں نے ہی اس چیز کو انٹروڈیوس کروایا اور ان ڈراموں میں انہوں نے خود بھی ایکٹ کیا, لیکن ڈائریکٹ کرنا یا پھر ان ڈراما کو, ایسے ڈراموں کو آگے پروموٹ کرنا بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو انہوں نے اس ٹائپ کے ڈرامے بھی انٹروڈیوس کیے. اس کے علاوہ ہم ان کے جو مطلب کہ ان کا نام جو جن ڈراموں سے بنا تھا, اگر ہم ان کا بھی ڈسکس کریں تو جیسے میں نے کہا وارث جو ہے وہ لاہور میں پی ٹی وی سے 70 مطلب پورے ایک سال چلا تھا یہ ڈرامہ 1978 سے 1979 تک. اور اس کے علاوہ پھر آ کے پیاس کے نام سے ایک ڈرامہ تھا, پھر دوریاں, پنجرا, مہندی, مورت آن پی ٹی وی پہ لگا تھا. اس کے علاوہ ڈفرینٹ اس ٹائپ کے رخ سے تھی اور خان صاحب, اور ایک اور جو ڈرامہ جو مجھے بہت پسند ہے ان کا پیارے دل, جس میں انہوں نے پراپر جس طرح کی ان کی پرسنالٹی مجھے ایٹ لیسٹ لگتی ہے انہوں نے ویسا ہی رول ادا کیا. ایون یہ مارننگ شوز یا پھر کوئی انٹرویو دینے کے لیے آئے تو وہاں پہ بھی ان کو دیکھے تو ان کی پرسنالٹی جو ہے نا وہ ویسی ہی لگتی ہے کہ بڑی ایک روبدار اور مطلب کہ اپنے آپ کو پوائز رکھنا, بیٹھنا اور اٹھنا, اور بڑے ایک رائل قسم کا ان کا لگتا ہے. تو انہوں نے جو دیارے دل ڈرامہ آیا تھا اس میں بھی انہوں نے بہت اچھے طریقے سے انہوں نے اس ڈرامے کو بیسکلی کنٹینیو کیا تھا اور اپنی پرسنالٹی اینڈ تک. حالانکہ یہ ڈرامہ جو تھا اینڈ پہ یو نو ہی بریکس ڈاؤن اور ہی کرائز اینڈ وہ اپنا سارا جو غبار ہوتا ہے بیسکلی وہ نکال دیتے ہیں, لیکن اس میں یہ اچھا لگا کہ ان کی جو پرسنالٹی شروع سے دکھائی جاتی ہے, ایک حویلی ہوتی ہے اس کے, یو نو ہی از دا اونر, اور وہ ایک آپ کے ذہن میں اس لیے وہ سارا سیٹ اپ آ رہا ہوگا. تو وہ والی جو چیز تھی نا وہ ایک جو بہت پسند آئی, اور وہ والی جو چیز تھی وہ بہت ایک خوبصورت اور بہت اٹریکٹیو ہوتی ہے. تو عابد علی جو ہے ان کی اگر بات کریں تو وہ انہوں نے اس رول کو میرے خیال سے, کیونکہ میں نے اپنی لائف میں ان کا جو کمپلیٹ ڈرامہ جو دیکھا ہوگا وہ ڈیفینیٹلی دیارے دل دیکھا تھا, اور وہ ایک کمپلیٹ ان کی پرسنالٹی پر سیٹ ہوتا ہے. خیر اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہ کہو اور جلتے گلاب اور دستارے آنا, دلدل میں انہوں نے ایز ثاقب جو ہے انہوں نے مطلب کہ رول ادا کیا تھا. اور اس کے علاوہ انہوں نے بہت سارے جو ہے نا ڈرامہ اور بھی کیے. تو اس طرح کرتے ہیں کہ اب ہم لوگ اسی ٹائپ کے رائل ڈراماز کو ڈسکس کرتے کرتے ایک رائل گانے پہ چلتے ہیں, اور وہ ہم سفر تھا بائی قرۃ العین بلوچ. ہم اس کو سنتے ہیں اور اس کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر آگے عابد علی کو فردر ڈسکس کرتے ہیں. اسٹے ٹیون ٹو FM 92.6.

Listen. Learn. Discover. With Radio Station FM 92.6 UCP ki duniya. वेलकम बैक लिसनर्स, आप लोग सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया और आप लोगों ने ज्वाइन किया है फातिमा अहमद को एक्सक्लूसिव लेजेंड्स में। एक तो इसका ना शो का नाम जो है ना वो जल्दी जल्दी से बोलते हुए ना हमेशा स्लिप ऑफ टंग हो जाता है और सब कुछ बीच में मिक्स हो जाता है, लेकिन इस शो का नाम है एक्सक्लूसिव लेजेंड्स। और जब आप तेज़ी में फ्लो में बोल रहे होते हैं ना तो फिर आपको पता भी नहीं चलता और आप एकदम से जल्दी जल्दी बोल जाते हैं और जो पीछे वाली बातें होती हैं वो जल्दी से गायब हो जाती हैं, पता भी नहीं चलता। लेकिन आई थिंक वो जब आप शो का एक रेडियो शो का हिस्सा बनते हो तो फिर आपके पास दो टोन्स होती हैं, या फिर आप बहुत स्लो हो जाते हो या फिर आप बहुत फास्ट हो जाते हो। वो बीच वाली जो लाना जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब आपको पता होता है कि आप एक माइक से बातें कर रहे हो और सिर्फ माइक से बातें नहीं कर रहे, आपको पता नहीं है कि कौन कौन आपको सुन रहा है, कहाँ कहाँ से सुन रहा है। तो अब इस तरह करते हैं कि अब म्यूजिकल ब्रेक पर चलते हैं और म्यूजिकल ब्रेक के बाद फिर हम लोग वापस आएंगे और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे आबिद अलीम। सो स्टे ट्यून्ड टू FM 92.6।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हों मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हों मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में यूसीपी नंबर वन।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है यूसीपी की दुनिया। आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

0: University of Central Punjab, FM 92.6, UCP ki duniya.
1: Only on FM 92.6, UCP ki duniya.
2: ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत. आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, एफएम 92.6.
3: एक नई सोच,
4: एक नई पहचान,
3: एक नई लगन.
4: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान.
3: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से.
4: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
3: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में यूसीपी नंबर वन.
4: जब मिलती है लगन,
3: मेहनत,
4: कामयाबी और खुलूस,
3: तो बनती है यूसीपी की दुनिया. यूसीपी की दुनिया. आप सुन रहे हैं FM 92.6.
4: सुनते रहिए.

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर वन।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में यूसीपी नंबर वन।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: यूसीपी की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

0: एक नई सोच,
1: नई सोच,
2: एक नई पहचान,
3: पहचान,
0: एक नई लगन,
4: नई लगन।
2: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
0: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
2: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
0: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में यूसीपी नंबर वन,
4: यूसीपी नंबर वन।
2: जब मिलती है लगन,
0: मेहनत,
2: कामयाबी और खुलूस,
0: तो बनती है
2: यूसीपी की दुनिया।
4: यूसीपी की दुनिया।
0: आप सुन रहे हैं FM 92.6।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: एक नई सोच,
1: एक नई पहचान,
0: एक नई लगन।
1: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
0: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
1: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
0: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में यूसीपी नंबर वन।
1: जब मिलती है लगन,
0: मेहनत,
1: कामयाबी और खुलूस,
0: तो बनती है यूसीपी की दुनिया। आप सुन रहे हैं FM 92.6।
1: सुनते रहिए।

0: University of Central Punjab, FM 92.6, UCP Ki Duniya.
1: Only on FM 92.6, UCP Ki Duniya.
2: ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत. आपकी दुनिया हमारी दुनिया. UCP की दुनिया FM 92.6.

नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।
1: सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.8।

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: क्या आपने अपने बेटे की रवैये या आदत में कोई तब्दीली महसूस की है? जैसे स्कूल से गैराजी की वजह पूछे तो टालमटोल करता है, आजकल कुछ ज्यादा पैसे तो नहीं मांगता, ज्यादा वक्त दोस्तों में गुजारता है, बुझा बुझा सा रहता है, कोई बीमारी नहीं लेकिन कमजोर होता जा रहा है, कभी नोट किया है आंखें लाल लाल सी हैं? अगर इन सवालों का जवाब हाँ में है तो ये नशे की अलामत हो सकती है। घबराने या सख्ती करने की जरूरत नहीं, इसे जल्द डॉक्टर को दिखाइए, कहीं देर ना हो जाए।
1: This is a public service message from INL, MNC and UNODC.

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: क्या आपने अपने बेटे की रवैये या आदत में कोई तब्दीली महसूस की है? जैसे स्कूल से नाराजगी की वजह पूछे तो टालमटोल करता है, आजकल कुछ ज्यादा पैसे तो नहीं मांगता, ज्यादा वक्त दोस्तों में गुजारता है, बुझा बुझा सा रहता है, कोई बीमारी नहीं लेकिन कमजोर होता जा रहा है, कभी नोट किया है आंखें लाल लाल सी हैं? अगर इन सवालों का जवाब हाँ में है तो ये नशे की अलामत हो सकती है। घबराने या सख्ती करने की जरूरत नहीं, इसे जल्द डॉक्टर को दिखाइए, कहीं देर ना हो जाए।
1: This is a public service message from INL, MNC and UNODC.

0: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
1: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: कहीं फिर से रहमो चाचा अपना डांगा लेकर ना आ जाए, वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे। मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ।
1: आमतौर पर यही समझा जाता है कि बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी सिर्फ अजनबी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है। दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन पर माँ बाप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। बच्चों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, इनकी मर्जी के खिलाफ कोई इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं। जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है। तहफ्फुज हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं। मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्पलाइन 1099 पे कॉल करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
2: ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: वेलकम बैक सामाइन, FM 92.6 पे आपको हम वेलकम करते हैं। हमारे प्रोग्राम का सिलसिला अब फिर जारी हो रहा है दोबारा वक्फे के बाद। तो हमारी जो कॉन्फ्रेंस थी उस कॉन्फ्रेंस के हवाले से हम बात कर रहे थे। डॉक्टर शाजिया हमारे साथ मौजूद हैं, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है साइकोलॉजी डिपार्टमेंट UCP में यहाँ। तो मैं डॉक्टर साहब, आपने जो थीम बनाई है कॉन्फ्रेंस की, उसमें आपने जो है वो जो ज़हनी सेहत है और उसका इंसानी वक़ार के साथ ताल्लुक़ है, मेंटल हेल्थ और उसका ह्यूमन डिग्निटी के साथ जो रिलेशनशिप है, जरा थोड़ा सा इसको एक लेमैन के लिए, एक आम शख्स के लिए जरा बयान कीजिएगा ताकि वो समझ सके कि ये क्या है चीज़, ये ज़हनी सेहत और इंसानी वक़ार, उसको जरा थोड़ा सा ये चीज़ें रिलेट करने में दुश्वारी होती है, जरा इसकी वजाहत कीजिएगा।
2: जी डॉक्टर साहब, ज़हनी सेहत को जब हम इंसानी वक़ार या हम डिग्निटी के साथ रिलेट करते हैं तो इंसान की जो वकार है, मेरा ख्याल है वो दुनिया में बड़ी इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है हमारी एग्जिस्टेंस के लिए। हमारा जो वजूद है उसके लिए हमारे वकार की बहुत अहमियत है। हमें लोग कैसे देखते हैं, हमें लोग कैसे ट्रीट करते हैं, हमारे साथ कैसा रवैया रखते हैं, ये बड़ा इंसानों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। और इंसानों का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि ये एक छोटे बच्चे से ले कर एक बुजुर्ग इंसान जो है, ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट के सारे फेजेस हैं जिसमें हम एक बिल्कुल जो छोटा बच्चा है जो 5 साल तक की उम्र का है, फिर एक 12 साल तक की उम्र का है, फिर एक टीनेजर है जो 18 साल की उम्र का है, फिर उसके बाद एक 25 से 30 साल 35 साल का एक एडल्ट है, फिर मिडल एडल्टहुड है, फिर ओल्ड एज है। हर उम्र की अपनी इज्जत की तौकीर की रिक्वायरमेंट्स होती है,
1: प्रोटोकॉल है,
2: प्रोटोकॉल है और डेवलपमेंट का हिस्सा भी है
1: जी।
2: क्योंकि यही जो इज्जत है, यही जो तौकीर है, यही जो डिग्निटी है, ये हमारे सेल्फ को डेवलप करती है। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं और हम अपने आप को क्या समझते हैं, ये हमें माहौल भी बताता है और हम खुद भी उसको एवेलुएट कर रहे होते हैं। और वक्तन फवक्तन जो फीडबैक हमें लोगों की तरफ से मिल रहा होता है वो या तो हमारे कॉन्फिडेंस और सेल्फ इस्टीम को बढ़ाता चला जाता है या फिर वो हमारे सेल्फ इस्टीम और कॉन्फिडेंस को कम करता चला जाता है।
1: जैसे इकबाल ने इसको कहा है ना कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। यानी सेल्फ एस्टीम में अपने आप को इस तरह से लेके चलें कि अल्लाह ताला भी आपको पसंद करे,
2: पसंद करे। और सेल्फ एस्टीम डेवलप करने वाले लोग जो हमारे इर्द गिर्द हैं वो सारे वो अफराद हैं जो हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, जो हमारे उस्ताद हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे प्रोफेशनल कोलीग्स हैं, जो हमारी लीडरशिप है और जो हमारी कम्युनिटी है ओवरऑल, ये सारे लोग कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं ह्यूमन डिग्निटी की तरफ कि वो किस तरह से इंसानों को ट्रीट करते हैं।
1: बिल्कुल ठीक।
2: इंसानों को हम किस तरह से सोचते हैं कि इंसानियत की, हम कहते हैं कि इंसानियत की मेराज ही यही है कि हम इंसानों के हकूक भी पूरे करें और इंसानों को अच्छे तरीके से डील करें।
1: बिल्कुल ठीक।
2: तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आजकल हम देखते हैं कि आइसोलेशन की तरफ बहुत जा रही है यूथ, बहुत अलग थलग होना शुरू हो गए हैं। तो वो जो कनेक्शंस थे, अटैचमेंट्स थी जिससे हम वो डिग्निटी फील करते थे
1: और डिसअपीयर हो रही है,
2: वो डिसअपीयर हो रही है। दूसरा जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं, क्योंकि इस वक्त
1: जैसे तौर पे कमजोर लोग हैं, तबकात हैं,
2: अब इसमें बहुत सारे तबकात आ जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि अभी हम जब डिग्निटी की बात करते हैं तो उसमें हम ये कहते हैं कि बहुत सारी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं और उसमें जो कम्युनिटी हम डील करते हैं वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ है। अब क्या उनको डिग्निफाइड वे में मुआशरा ट्रीट कर रहा है? क्या ये एक फैक्टर नहीं है कि हम अगर किसी के घर के अंदर कोई ज़हनी मरीज हो तो वहाँ जाना, उन लोगों के साथ उठना बैठना, उन लोगों के साथ रिश्तेदारी करना, क्या ये सारी चीज़ें हम क्वेश्चन नहीं करते कि हम इस फैमिली के साथ अपना ताल्लुक रखें या ना रखें? फिर जहाँ पे उन लोगों को ट्रीटमेंट दिया जाता है और क्या फैमिलीज उन पे इन्वेस्ट करने पे तैयार हैं कि दे हैव देयर राइट टू बी ट्रीटेड जैसे बाकी ज़हनी अमराज के अलावा बीमारियाँ हैं उनके इलाज कराया जाता है। तो डिग्निफाइड वे में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को क्यों नहीं करवाया जाता ट्रीट, उसको क्यों छुपाया जाता है? और फिर तीसरा, जो ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल है उसमें इतने कम लोग हैं हमारे पास इस वक्त कि ऑल ओवर द कंट्री अगर हम कैलकुलेशंस देखें तो वो इतनी मिनिमल हैं कि वो हर पर्सन की एक्सेस टू मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है ही नहीं, ना होने के बराबर है। तो हमारे लिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि वो डिग्निटी और फिर ट्रीटमेंट मेथड्स जो यूज़ किए जा रहे हैं, जो ट्रीटमेंट सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, क्या उसमें कोई एथिक्स, कोई कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसको फॉलो किया जा रहा है? क्योंकि ये लोग अपनी जहनी तौर पे अपनी रियलिटी को तो पहचान नहीं पा रहे होते
1: जी।
2: उन्हें तो एहसास ही नहीं होता कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, तो उनको कैसे ट्रीट किया जाता है? जैसे छोटे बच्चे हैं जिनके जहनी मसाइल होते हैं, जो कि इंटेलेक्चुअली डिसेबल या हम जिनको डिफरेंटली एबल्ड बच्चे कहते हैं, तो उनको तो पता ही नहीं है। तो आपने कुछ वाकयात सुने होंगे कि जिसमें दूसरा कोई भी एक नॉर्मल इंसान जो वहाँ पे एम्प्लॉई है वो उनको मिसट्रीट कर रहा है, उनको मार रहा है, और साथ वो एक जुमला इस्तेमाल करता है जिसने मेरे दिल पे तो बहुत असर किया, मुझे नहीं पता कि दूसरे लोगों को कैसे इफेक्ट किया होगा, कि तुम तो सुन और बोल नहीं सकते, आप अपने बाप को जाके क्या बताओगे? तो ये जो तकलीफ है, ये जो डिग्निटी हम नहीं दे पा रहे, तो हमें हर लेवल पे ट्रेनिंग करने की जरूरत है। वो जो बहुत लोअर लेवल पे भी एक पर्सन इन लोगों के साथ डील कर रहा है, जो हमारे रिसर्चर्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, कि पॉलिसी लेवल पे भी चेंजेस आनी चाहिए, ट्रेनिंग्स भी होनी चाहिए, अवेयरनेस भी होनी चाहिए। तो डिग्निटी को इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस कॉन्फ्रेंस में एड्रेस करना चाहते हैं।
3: मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, जैसे मैडम ने बात की, जब हम फैमिलीज की भी बात करते हैं ना, खासतौर पर जब हम स्पेशल नीड्स, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की बात करते हैं, तो मेरी कुछ रिसर्चेस भी क्योंकि उस पर हैं, तो हम जब मदर्स से बात करते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द मदर्स जो उन्होंने रिपोर्ट किया, जो लेवल्स उनमें बहुत ज़्यादा हाई थे, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा था, सोशल आइसोलेशन और सोशल रिजेक्शन बहुत ज़्यादा थी। और सोशल आइसोलेशन और सोशल रिजेक्शन का मतलब ये था कि लोगों ने उनको अपने घर बुलाना छोड़ दिया, क्योंकि आपका बच्चा तो बहुत शरारतें करता है, वो हमारे घर आता है तो हमारा तो पूरा घर हिल जाता है, तो आई एम सॉरी हम आपको बुला नहीं सकते, और ये उनको कहा जाता था।
1: बात सुनते तो ये ना कि कह दिया गया है, जब बहुत सारे सुनते ऐसे नहीं कहा ही नहीं जाता, लेकिन वो एक खामोश सिग्नल होता है, आप समझ जाते हैं पहला तो आना जाना था और अब कम।
3: तो वो जो सोशल रिजेक्शन वाला एस्पेक्ट है वो बहुत डीपली उन्होंने महसूस किया और उसको रिपोर्ट भी किया।
1: सही,
3: और वहां पे आप देखें कि उनकी मेंटल हेल्थ कितनी डिस्टर्ब हो गई।
1: यकीनन। अच्छा मिस नेमा, आप ये बताइएगा कि इस मेंटल हेल्थ का, ज़हनी सेहत का क्लाइमेट चेंज के साथ, मौसमी तब्दीलियों के साथ कैसे लिंक है? चलें, ये बाकी चीज़ें तो हमें समझ में आती हैं, ये सोशल आइसोलेशन की बात की, सोशल रिजेक्शन की आपने बात की, और एक शख्स जो है वो बेचारा बोल नहीं सकता और सुन नहीं सकता, और उसके ऊपर तशद्दुद किया जाए, फिर उसको ये कहा जाए कि भी तुम कैसे बताओगे वगैरह वगैरह वगैरह, चाहे वो इशारों से बताया जाए, अगर वो सुन सकता है तो चले, वो बोल नहीं रहा है तो उसको बताया जाए, तो ये वाकई किसी इंसान की बेबसी का बहुत बड़ा मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है, और तकलीफ तो पहुँचाई जा रही है।
2: और इसी को डॉक्टर साहब हम ह्यूमिलेशन
1: जी, बिल्कुल ह्यूमिलेशन, बिल्कुल
2: इसी को हम ह्यूमिलेशन कहते हैं।
1: तो मिस नईमा, आप ये बताइएगा कि अब इसको क्लाइमेट चेंज के साथ आप किस तरीके से जबरदस्ती मिला रहे हैं? मैं ये समझ रहा हूँ कि आप जबरदस्ती मिला रहे हैं, जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं, इंतजार नहीं होगी, मुझे लग रहा है जबरदस्ती मिला रहे हैं आप।
3: बिल्कुल सर, मैं आपको कुछ इसको एक्सप्लेन करती हूँ, कुछ ही मेरा ख्याल हफ्तों की बात है, स्मॉग आने वाली है लाहौर में
1: जी, बिल्कुल,
3: और हमारी कुछ अगेन रिसर्चेस हैं इसके ऊपर भी, कैसे स्मॉग ने इफेक्ट किया है लोगों की फैमिली लाइफ को।
1: अच्छा।
3: बच्चों को और उनकी मदर्स को और इवन फादर्स को भी। अब उसकी वजह क्या है? क्योंकि स्मॉग है तो यू आर स्टेइंग एट होम मोस्ट ऑफ द टाइम, और आपकी पूरी रूटीन जो है वो भी इफेक्ट हो रही है, आप काम पे नहीं जा रहे, आप स्कूल नहीं जा रहे, सो उस दौरान इट हैज़ बीन रिपोर्टेड कि वो जो कुछ आप कह लें जो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या इवन डोमेस्टिक वायलेंस, इट हैज़ सेड टू बी इंक्रीज ड्यूरिंग दैट टाइम, विच इज़ अलार्मिंग फॉर अस, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेटेड ज़्यादा है ना, आपका काम ख़त्म हो रहा है, आप काम पे नहीं जा रहे, आप घर रह रहे हैं, और वो आपके अंदर एक बिल्डअप एग्रेशन ला रहा है, और वो अग्रेशन फिर ایک ایسی طرح سے نکل رہا ہے جس طرح سے نہیں نکلنا
1: چاہیے. یعنی پہلے اگر آپ آفس میں تھے ایسے لوگ جو فرسٹریشن کا شکار ہیں, وہ اپنے سبارڈینیٹس کے ساتھ برا رویہ اختیار کرتے ہیں, اب چونکہ وہاں چھٹی ہے اب وہ فرسٹریشن گھر پہ نکل رہی ہے بچوں پہ.
3: اور دوسری یہ بھی بات ہے کہ چھٹی ہے, کئی لوگوں کا کام ایسا ہے نا کہ آپ روز جا رہے ہیں, آپ روز کام کر رہے ہیں, اینڈ یو آر ارننگ سم تھنگ آؤٹ آف اٹ, اینڈ وین یو آر ناٹ گوئنگ ایوری ڈے تو یو آر اسٹیئنگ ہوم, اور وہ آپ کو اور زیادہ فرسٹریٹ کر رہا ہے
1: کہ آپ کما نہیں رہے, گھر کا خرچہ کیسے چلے گا.
2: میں بھی اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گی سر.
1: ڈاکٹر صاحب ابھی اس ہم گفتگو کو ابھی لیتے ہیں, ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے, تو اس بریک کے بعد ہم اس بڑی پروڈکٹیو اور نالجیبل جو ڈسکشن ہے اس کو جاری رکھیں گے. سامعین ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم ابھی کچھ دیر بعد وقفے کے بعد آپ سے ملتے ہیں اور اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں.

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

सुरोर्तान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: के सुर और तान, सुर और तान, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार, और तकरार। सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास,
1: मस्ती के पास,
0: सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

सुर और ताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: 24/7 only on FM 92.6 UCP Ki Duniya. Fun, entertainment, news, knowledge 24/7 only on UCP FM 92.6 UCP Ki Duniya.
1: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की. ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की. तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया.

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत।

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: एक नई सोच,
1: नई सोच,
2: एक नई पहचान,
3: पहचान,
0: एक नई लगन,
4: नई लगन।
2: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
0: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
2: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
0: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1,
4: UCP No. 1।
2: जब मिलती है लगन,
0: मेहनत,
2: कामयाबी और खुलूस,
0: तो बनती है
2: UCP की दुनिया।
0: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
2: सुनते रहिए।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज़ हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, एफएम 92.6।
1: मट्टी का है बाबा तू, तेरी किस्मत एक सफर।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: मौसीकी के सुर और ताल,
1: सुर और ताल,
0: ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार,
1: और तकरार,
0: सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास,
1: मस्ती के पास,
0: सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCD Dunia.

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: vấn.
1: Only on FM 92.6 UCP Keep Duniya.

0: सुरोर्तान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।
1: Listen to me, baby. You know I'm always thinking about you. So why don't you just forget about everything and come on to me now?

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

0: एक नई सोच,
1: नई सोच,
2: एक नई पहचान,
3: पहचान,
0: एक नई लगन,
4: नई लगन।
2: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
0: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
2: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
0: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में यूसीपी नंबर वन।
2: जब मिलती है लगन,
0: मेहनत,
2: कामयाबी और खुलूस,
0: तो बनती है यूसीपी की दुनिया। आप सुन रहे हैं FM 92.6।
2: सुनते रहिए।

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

www.musicbeat.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

0: after short break.
1: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

0: तेरा चेहरा फिर अगर मैं देख लूं बस एक बार, शुक्र करते करते बाकी जिंदगी को 2000।
1: 200 साल गुजर गए, पंजाब सिखों के कब्जे में चला गया और बदनसीब अनारकली का मजार शहजादा खड़क सिंह की रिहाइशगाह बना दिया गया। 50 साल यूं गुजरे और फिर अंग्रेज आ पहुंचे। इबादत के लिए जगह अच्छी लगी, सो गुंबद में सलीब गाड़ी और सारी इमारत चूने से ढकती। 40 साल तक मजार हैलेलुया से गूंजता रहा, फिर सलीब तो उतर गई लेकिन मजार को दफ्तरी फाइलों से लाद दिया गया। अब तमाम दिन इसमें फोन की घंटियां गूंजती हैं और क्लर्क शोर मचाते हैं। फिर शाम होती है और सारा मजार इश्क की रोशनी में नहा जाता है, लेकिन ये मंजर तारीख दानों के लिए नहीं, सिर्फ दिल वाले ही इसे देख सकते हैं।
2: ये आवाज है

0: एंड न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद, और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।